एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 14वीं तिथि तदनुसार 5 सितंबर 2026। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
3: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
4: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
3: And recovery efforts in the country.
1: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है।

0: उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृवंदना के साथ।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। लीजिए अब सुनिए शर्मा बंधुओं के स्वर में ये भजन, रचना है पंडित रामानंद शर्मा की।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के तहत आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज सुबह 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। भूले बिसरे गीत सुनिएगा सुबह 6:40 पर। संस्कृत में समाचार होंगे सुबह 6:55 पर। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह सुनिएगा 7 बजे से। कार्यक्रम कृषि संकेत का समय होगा सुबह 7:05। प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आज सुबह 7:10 पर। और सुबह 7:20 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

सुबह 7:45 में प्रेस सुनिएगा संगीत सरिता, समाचार प्रभात सुनिएगा सुबह 8 बजे से। सुबह 8:15 पर समय होगा कार्यक्रम लोक संगीत का। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 8:30 पर। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुबह 9 बजे से आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे। जिले की चिट्ठी सुनिएगा आज सुबह 10 बजे से। सुबह 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत। कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी सुनिएगा सुबह 10:30 पर। सुबह 11 बजे से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे। आज दोपहर 2 बजे से सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश। प्रादेशिक समाचार सुनिएगा दोपहर 2:10 पर। दोपहर समाचारों का समय होगा आज दोपहर 2:15। दोपहर 2:30 पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे। आज शाम 5:02 पर सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। संगीत सरिता का समय होगा शाम 5:30।

आज शाम 6 बजे से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। सदाबहार गीत सुनिएगा शाम 6:30 पर। लोक रंग सुनिएगा शाम 6:45 पर। हिंदी में समाचार होंगे शाम 7 बजे से। कार्यक्रम विवरण सुनिएगा शाम 7:05 पर। प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 7:10 पर। लोक रंग सुनिएगा शाम 7:20 पर। किसान वाणी सुनिएगा शाम 7:30 पर।

आज रात्रि 8 बजे से महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल सुनेगा। समाचार संध्या सुनेगा रात्रि 8:45 पर। रात्रि 9 बजे से महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी रहेगा। हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 बजे से। अंग्रेजी में समाचार सुनेगा रात्रि 11:05 पर। रात्रि 11:10 पर महिला एशिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल जारी रहेगा।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, स्वर श्रीकांत परगांवकर और रविंद्र साठे।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम हैं, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे हैं।

श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत में सुनिए गीतादत्त और मन्ना डे की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है देवदास। गीत लिखा है साहिर ने, संगीत दिया है SD वर्मन ने।

0: कहा है, जल वह ज्योतिर्मय।
1: लीजिए आप सुनिए, फिल्म आग से ये गीत आवाज है शमशाद बेगम की। गीत लिखा है वैजत लखनवी ने, संगीत दिया है राम गांगुली ने।

लीजिए आप सुनिए फिल्म मधुमती से गीत आवाज़ मुकेश की। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए गीता दत्त की आवाज में फिल्म बाजी से ये गीत। आवाज गीता दत्त की है, गीत लिखा है साहिब ने, संगीत दिया है एस डी वर्मन ने।

हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घड़ी की जवानी है। हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घड़ी की जवानी है। और जीने वाले होर

0: हाथ है, क्योंकि अनुशासन ही मानव सभ्यता के विकास की पहली सीढ़ी है, जिसके जरिए हमारा क्रम अनुसार विकास संभव हो पाया है। हम देख सकते हैं प्रकृति के सारे कार्य, सारे नियम किसी न किसी धुरी से बंधे होते हैं, जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, मौसम और ऋतु परिवर्तन, चांद और सूरज का निकलना। यदि प्रकृति के किसी भी नियम में जरा भी परिवर्तन हो जाए तो इसका असर हमारे जीवन पर भी होने लगता है। अनुशासन का मतलब ही है नियम के अधीन में रहना या नियमों के शासन में रहना। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है। यदि हम अनुशासन में ना रहें तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। अनुशासन के बिना मनचाही सफलता प्राप्त करना भी संभव नहीं है। अनुशासन हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। खासकर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन सबसे अधिक महत्व रखता है, क्योंकि यदि विद्यार्थी जीवन में हमने अनुशासन को अपने जीवन में उतार लिया तो सफलता मिलना निश्चित ही है। अनुशासन के जरिए ही हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। नियमित रूप से योग करना, खान पान की शैली, समय पर उठना, इन सारे कामों में अनुशासित रहने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और हम सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए हमें अनुशासन के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को भी उसी के अनुसार ढालने का प्रयास करना चाहिए।
1: मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का बच्चा भी है।
0: कार्यक्रम सुबह सुबह में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए सुनिए संदेश।
1: 95 टन राहत सामग्री भेजी है।
2: हमने नेपाल सरकार और

0: जवानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
3: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
4: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर, और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
3: News on AIR?
4: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
3: अरे वाह माँ, कमाल है।
0: News on AIR। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि संकेत। विषय है फसलों में दो प्रकार की इल्लियों का एक साथ नियंत्रण, विशेषज्ञ अंकित रावत।
1: किसान भाइयों को ये सलाह रहेगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो रकबा ज्यादा है वो सोयाबीन उड़द का ज्यादा रहता है, इनमें इल्लियों से समस्या भी आती है, क्योंकि जो आपका सोयाबीन या उड़द का जो पौधा रहता है जिस हिसाब से उसकी पत्तियां रहती है उनको अच्छा लगता है खाना, बड़े चाव से वो खाते हैं, इन फसलों में इल्लियों का प्रकोप भी ज्यादा होता है। एक मिलेगी आपको ऐसी इल्ली जो आपकी केवल फसल की पत्ती का रस चूसते रहेगी, उसको हम कहते हैं साधारण भाषाओं में रस चूसक। दूसरा कीट अपना आ गया इल्ली वाली प्रवृत्ति में, जो कीटों का नेचर रहता है, तो इल्ली कुतर के नुकसान पहुंचाती पत्तियों को, और जो रस चूसक कीट रहते हैं वो हमारी फसलों की पत्तियों का रस चूस के उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जहां जहां पे आपके सोयाबीन उड़दा की खेती होती है, लगभग लगभग सारे क्षेत्रों में आपका जो पीला रोग एक आम रोग है, हर किसान भाई उस रोग के बारे में भली भांति जानता है, सब अपने खेतों में देखते रहते हैं, लेकिन उसका हमारे किसान भाइयों का कारण नहीं पता रहता, उन्हें का पत्ती पीली पड़ गई वो उसको उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन वो रोग जो हमको दिखता है वो रोग होता है विषाणु से, और जो विषाणु फैलता है वो आपकी मक्खी से, सफेद मक्खी होती है चूसने वाली प्रवृत्ति वाले वो कीट रहता है। अब होता क्या है, उसने रस चूसा, जब पत्ती से रस चूसा तो जो आपका ग्रसित पौधा था जिसमें पीले रोग का अटैक हुआ है, तो उसने रस के साथ साथ रोग के विषाणु को भी चूस लिए। अब वो उसने रोग के विषाणु को चूसे दूसरे पौधे पे जाके बैठा, पहले तो हमारा एक पौधा ग्रसित था, देखते ही देखते वो मक्खी 10 पौधे पे जाके बैठी, तो धीरे धीरे करते करते देखते ही देखते जब हम पहले दिन देखा तो हमारा एक पौधा था, और वही अगर हम 4 दिन बाद जाके देख रहे हैं तो हमारा आधा खेत पीला, और उसी को हमने जब एक हफ्ता बाद देखा तो पूरा खेत पीला। तो जब तक हम सोचे इसका नियंत्रण करें तब तक तो हमारा पूरा खेत ही पीला हो जाता है। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध रहता है कि आप अपने खेत का नियमित भ्रमण करें, तो घूमने के बाद आपको आपके खेत में क्या समस्या आ रही वो दिखती रहेगी। अब जैसे मान लीजिए अपन ने बात करी ये पीला मोजक रोग होता है वो रस चूसक इल्ली से रहता है, तो इसका नियंत्रण कैसा करें, तो एक तो नियंत्रण हो गया कि जो रोग ग्रसित पौधे हैं उनको आप उछकाओ, उछका के आप गाड़ दो माटी में ताकि वो वायरस वहीं के वहीं खत्म हो। लेकिन सफेद मक्खी खत्म हुई क्या, सफेद मक्खी तो वहीं की वहीं है, तो हमें सफेद मक्खी का नियंत्रण करना आवश्यक रहता है। जो आपका कीटनाशक रहते हैं, कीटनाशक की प्रवृत्ति होती है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब यह है कि वो पौधे के किसी भी भाग में गिरा और गिरने के बाद पूरे पौधे में फैल गया, और जैसे ही वो आपका इल्ली ने आपके फसल में आई और उसने पत्ती सक करेगी उसके पश्चात वो मर जाएगी। अगर हमारे खेत में रस चूसक आपकी मक्खी का नियंत्रण हो गया तो येलो वैन मोजेक का नियंत्रण हो गया। ये तो बात हो गई रस चूसक इल्ली की। अब इसमें आती है दवाई हम कौन सी डालें, तो रस चूसक इल्ली के लिए हम हमारे किसान भाइयों को सजेस्ट करते हैं, वैसे तो आपके दुकानों में कई दवाइयां उपलब्ध है, जैसे आप रस चूसक बोलोगे वो आपको दुकानदार कई प्रकार की दवाई दे देगा। उसके पश्चात भी अगर हम बात करें तो इमिडाक्लोरपेट आती है 17.8 SL, इसकी 60 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे किसान भाई इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये रस चूसक इल्ली की नियंत्रण की बात आ गई। लेकिन अब काटवे वाली इल्ली दिखने लगी आपके खेत में, किसान भाई के पास इतना पैसा नहीं रहता है, क्योंकि समस्याएं रहती है कैसे तैसे करके वो खेती करता है, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग फील्ड में देखते रहते हैं। तो इल्ली नियंत्रण और मक्खी नियंत्रण दोनों दवाओं को मिला के भी हम स्प्रे कर सकते हैं। जिस भी हम प्रतिष्ठान से लेंगे उससे हम पूछ लेंगे तो वो बता देगा कि कौन सी दवा अगर हम एक रस चूसक मक्खी के लिए मिला रहे हैं और आपका इल्ली के लिए मिला रहे हैं, इससे हमारी फसल पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसी दवा हम ले सकते हैं। तो इसके लिए हम थायोमेथॉक्सेम प्लस लैम्डा, ये दो अलग अलग दवाएं हैं, इनको हम मिला सकते हैं। इनकी 80 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम स्प्रे करें तो, और ऐसी भी और भी बहुत सी दवाइयां आती है, जब आप दुकानदारों के पास जाओगे ऐसे कई कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जैसे कि बीटा सल्फिरॉन प्लस इमिडाक्लोपेट, इसकी 125 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं, और भी ऐसे कई कॉम्बिनेशन आते हैं। अपने निकटतम दुकानदारों के पास जाएंगे तो आपको और दवाओं के बारे में बता देंगे। तो हम ऐसी दवा डाल सकते हैं जिससे हमारी रस चूसक मक्खी भी नियंत्रित हो गई और हमारा जो पत्ती काटने वाले इल्ली है वो भी नियंत्रित हो गई, जिससे हमारी फसल बची रही। अभी वर्तमान जो समय चल रहा है कीटों का प्रकोप हमारी जो सोयाबीन की फसल हो, चाहे उड़द की फसल हो, चाहे राहर की फसल हो, इनमें अधिक होता है, तो हमारे किसान भाई इस समय कीटों का प्रबंधन करें और अधिक से अधिक उत्पादन करें।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
1: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
0: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
1: भीगते झूमते नाचें गाएं,
0: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
1: पानी की एक एक बूंद बचाएं।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति की शिक्षकों से नई तकनीक अपनाने की अपील। भोपाल में 33 शिक्षकों का होगा सम्मान। प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कई समारोह में हुए शामिल। और 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी। कई जिलों में स्कूल बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्षों में संस्थान ने कई विद्वानों, पेशेवरों और देश के विकास में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री कॉलेज की 100 साल की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर भी बात रखेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से लगातार अपना ज्ञान बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीके इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों की प्रतिभा निखारने के साथ उनके चरित्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति ने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच, जिज्ञासा की भावना विकसित करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों और उच्च शिक्षा संस्थानों तथा पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर आज भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले प्रदेश के 33 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। चयनित शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और 25,000 रूपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इसके अलावा 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले प्रदेश के 2 शिक्षक शीला पटले और भैरू लाल औसारा का विशेष सम्मान होगा। रात 12 बजते ही प्रदेश के मंदिरों में नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जयकारे जयकारे गूंज उठे। उज्जैन, भोपाल, इंदौर, रतलाम, खंडवा, भिंड, टीकमगढ़ समेत कई शहरों में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रात को भोपाल के पटेल नगर स्थित इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहरों में गीता भवन और गांवों में वृंदावन ग्राम शुरू कर रही है। वहीं गौपालन और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: सरकार का मतलब केवल सड़क, बिजली, पानी का प्रबंधन कर दे, इससे पर्याप्त नहीं होगा। केवल आर्थिक व्यवस्था की चिंता करे, इससे भी पर्याप्त नहीं होगा। हमारी सनातन संस्कृति की धारा की अद्भुत विशेषता है, जिसके बलबूते पर समूची मानवता धन्य होती है। वसुदेव कुटुंबकम के भाव की प्रकट होने की उत्कृष्ट संस्कृति हमारी है। इसलिए सरकार का मतलब घर घर में राम कृष्ण खेले कूदे आनंद के साथ, हरेक घर में आनंद आए। इसलिए प्रेम से बोलते हैं, नंद घर आनंद भयो, जय करैया लाल की।
0: वहीं भोपाल सेंट्रल जेल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में जन्मोत्सव मनाया गया, जहां उन्होंने पात्र बंदियों की सजा में 1 महीने के विशेष छूट देने की घोषणा की। इंदौर में मटकी फोड़ और रतलाम में दही हांडी का आयोजन हुआ, जबकि उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान का श्रीकृष्ण स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में निवेश बढ़ने का मतलब रोजगार के नए मौके बढ़ना है। वे कल सीहोर में करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस की नई ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह देश की सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर निर्माण इकाइयों में से एक है और इससे करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए बेहतर माहौल और नीतियों के कारण बड़ी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला कल्पना मिश्रा की मौत के मामले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। कल श्री शुक्ल अनशन पर बैठे, कल्पना के पिता से मिले और निष्पक्ष जांच न्याय का भरोसा दिलाया। कल्पना मिश्रा को 26 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मामले में प्रथम दृष्टया लापरवाही के दोषी पाए गए 2 डॉक्टरों और कुछ नर्सों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 सितंबर कर दी गई है। शिक्षक अब 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन में सुधार के लिए 20 सितंबर तक समय रहेगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में प्रदेश के इंदौर और जबलपुर को स्वच्छ वायु सराहना पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोनों शहरों को धूल नियंत्रण, वैज्ञानिक तरीके से सड़क सफाई, हरित पत्तियों के विस्तार और निर्माण कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए ये सम्मान मिलेगा। जबलपुर में कल से पीएम ई बस सेवा का ट्रायल शुरू हो गया है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने खुद बस में सफर कर इसकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पहले दिन 10 इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल किया गया, जबकि आज से 2 रूटों पर 20 बसें चलाई जाएंगी। ये बसें ISPT से भेड़ाघाट और मदर टेरेसा नगर से रांची घाना रोड पर चलेंगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसूनी सिस्टम अब उत्तरी हिस्से में एक्टिव है, जिसके चलते अगले दो दिन ग्वालियर, चंबल, सागर, उज्जैन संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें श्योपुर और शिवपुरी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए आज श्योपुर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, भिंड, ग्वालियर समेत रायसेन में स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं नर्सरी से 8वीं तक के तो कहीं नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी की गई है, जबकि कई जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। एशियन गेम्स 2026 से पहले भारतीय निशानेबाजी टीम का अंतिम तैयारी शिविर भोपाल में लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में आज से 14 सितंबर तक चलने वाले इस कैंप में 18 निशानेबाज हिस्सा लेंगे, जिनमें 9 पुरुष और 9 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। कैंप में मनु भाकर, ईशा सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और राही सरनोबत जैसे बड़े नाम भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में गोगा नवमी का पर्व आज श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। खंडवा शहर में करीब 128 वर्षों से चली आ रही छड़ी निकालने की परंपरा के तहत गांधीनगर सहित 15 स्थानों से छड़ियां निकाली जाएंगी। चल समारोह में वीर गोगादेव महाराज की छड़ी के साथ श्रद्धालु शामिल होंगे। आगर मालवा के सुसनेर नगर परिषद के उपनिर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए अपर कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं। डिंडौरी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व विभिन्न शासकीय छात्रावासों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडला में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी में जिले भर में विविध आयोजन किए गए। गुना शहर सहित पूरे जिले में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिला जेल आलीराजपुर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें कैदियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विदिशा जिला मुख्यालय शहर की जनभावनाओं और आस्था से जुड़े प्रसिद्ध नंद उत्सव और मटकी फोड़ उत्सव का आयोजन इस साल भी धूमधाम के साथ किया जाएगा। 31 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में इस बार सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल देखने को मिलेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत में सुनिए फिल्म लगान से गीत। आवाज़ है आशा भोसले और उदित नारायण की। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जमुना देवी प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा बीबी आराध्या ने मेहरनगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर सरिता प्रणीता सिद्धांत प्रिंस एकांश और अर्जुन ने आकार हाइट्स नागपुर से शैलेश वैशाली गवानकर श्वेता सुमित और कुमारी ध्वनि ने एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे ललिता खर्चे गणेश कार्तिक संजना परी स्वाति प्रयाग चौधरी लड्डू देविका ने और इसी गीत को पसंद किया है डाकघर निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर गुरप्रीत लवप्रीत और करमजीत ने तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: nmstyle.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम मन चाहे गीत में। अगली फरमाइश हमें भेजी है छत्तीसगढ़ भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, नेहा राजू जगदीश देवांगन ने। इसी गीत को पसंद किया है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, रंजन रजक, लालू सोना, मोना हनी, यश और उनके माता पिता ने। इसी गीत को पसंद किया है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर ने। इसी गीत को सुनना चाहा है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा ने। झज्जर हरियाणा से मिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मिराज जहां ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से ये गीत। आवाज है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है RD वर्मन ने।

अगली फरमाइश हमें भेजी है मजनू का टीला से कमला बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। इसी गीत को पसंद किया है मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर, साहिजप्रीत सिंह ने। फजलिका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ी, शालिनी तिवांशी, वाणी आरबी जीवन से हैं ने। और कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, जाधव देशमुख, प्रशांत राजे, जगुताई राजे, संचित देशमुख, प्रथमेश, हर्षिता सानवी और प्रणाली ने। इसी गीत को पसंद किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने। तो आई सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म गुरु से ये गीत। आवाज़ है श्रिया घोषाल और उदय मजुमदार की, गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत। अगली फरमाइश हमें भेजी है मलियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जिवयम जैन ने इसी गीत को पसंद किया है। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़ी, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल ने। लाघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल और भारती ने। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैणन से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद, सोनल, बेबी सिया ने। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव ने। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जमदाड़े ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म मेरे जीवन साथी से ये गीत। आवाज़ किशोर कुमार की, गीत लिखा है मजरूह ने, संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। संगीत सरिता में सुनिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में ये गजल कलाम है कातिल राजस्थानी का और संगीत दिया है भूपेंद्र सिंह ने।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है।

0: संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit

0: act of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
2: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
3: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
2: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी,
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
5: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
6: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए BMC ने अस्पतालों को

0: पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
1: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन US उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई, नंद घर आए कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: एफ एम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। नीचे प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में सुनिए रामचरण अहिरवार के स्वर में ये कृष्ण भजन।
1: के खुल गए।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर द्वारा प्रायोजित वात्सल्य बच्चों का सुनहरा

0: दृश्य सुनिए रविवार सुबह 8:25 पर।
1: एक बार फिर आपका स्वागत है बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत में। लीजिए अब सुनिए बद्रीलाल मालवीय के स्वर में ये लोकगीत।

0: लीजिए अब सुनिए मांगीलाल प्रजापति के स्वर में ये कृष्ण भजन।
1: नाम के प्रताप वाल्मीक आदि ऋषि भय, नाम के प्रताप नंद कृष्ण पुत्र पायो है। नाम के प्रताप अजामिल से तारे खल, और नाम के प्रताप बैकुंठ में पठायो है। नाम के प्रताप टेक राखी पहला दिजू की, नाम के प्रताप द्रौपदी को पट बढ़ायो है। नाम के प्रताप अजामिल से तारे

इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत अभी यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार के स्वर में ये गीत। फिल्म का नाम है अफसाना। गीत लिखा है अनजान ने, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

लीजिए अब सुनिए फिल्म राजा और रंक से ये गीत। आवाज़ लता मंगेशकर, मन्ना डे कॉमेडी और विनोद शर्मा की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस।
2: लीजिए अब सुनिए फिल्म इजाजत से गीत, आवाज है आशा भोसले की, गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

लीजिए अब सुनिए, किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में यह गीत। फिल्म का नाम है बातों बातों में। गीत लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: गीत आप सुन रहे थे फिल्म थी टेल मी ओ खुदा, श्वेता पंडित और साथियों की आवाजें थी, मयूरपुरी के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर,

0: उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा जगत के जाने माने संगीतकार और पार्श्व गायक आदि श्रीवास्तव की आज पुण्यतिथि है। 4 सितंबर सन 1964 को मध्य प्रदेश के कटनी में जन्मे आदेश श्रीवास्तव ने बचपन से ही संगीत में रुचि रखी और बकायदा संगीत की तालीम भी ली। 1993 में आई फिल्म कन्यादान से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उनके संगीतबद्ध के नगमे फिजाओं में आज भी रंग भरते हैं। 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम, 2003 में बागबान, राजनीति, 2010 में आई हसीना मान जाएगी और बॉर्डर जैसी म्यूजिकल हिट गीतों के लिए उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने लगभग वैसे देखा जाए तो 100 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री विजेता पंडित हैं उनकी शरीक हयात। इन दंपति के दो बेटे हैं, अनिवेश और अवितेश।

0: हिट स्टोरी 3 फिल्म का गीत आपने सुना अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजें थी। रश्मि विराग के बोल थे, अमाल मलिक ने इस गीत को स्वरबद्ध किया।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाली उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओ, फिल्म जगत के जाने माने निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और संपादक विधु विनोद चोपड़ा का आज जन्मदिन है। उन्हें हम जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां देते हैं। उन्हें उनकी फिल्म परिंदा जून और 1942 अ लव स्टोरी, मिशन कश्मीर, थ्री इडियट्स, पी के संजू और मुन्ना भाई MBBS, इन फिल्मों के लिए जाना जाता है। और इस फिल्म की श्रृंखला, तीसरी श्रृंखला भी उन्होंने बनाई, विशेष रूप से इन फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। उनकी पहली लघु फिल्म मर्डर एट मंकी हिल काफ़ी चर्चा में रही। लघु किसान फिल्म एन एनकाउंटर विद फेसेस जो रिलीज हुई 1976 में, पहली फीचर फिल्म सजाए मौत थी। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई और थ्री इडियट्स, इन फिल्मों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया और फिल्म परिंदा को फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया।

मोनाली ठाकुर की आवाज थी दम लगा के हईशा। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, वरुण ग्रोवर का लिखा, अनु मलिक का संगीत था। और चित्रलोक कार्यक्रम की श्रोताओं, यही थी आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं सुरों के एक जादूगर की।

सुरों का एक ऐसा जादूगर जिसने दुनिया के कोने कोने से दोनों को अपनी झोली में लिया और उन्हें नया रूप देकर सुरों की चाशनी में पिरोकर हमारे सामने पेश कर दिया।

सलील चौधरी का जन्म 19 नवंबर 1925 को हुआ था 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में और बचपन से ही उनका लगाव संगीत की ओर था। उनका बचपन असम के चाय बागानों में बीता और चाय बागानों की सरगम उनके जहन पर छप गई। उनके पिता संगीत के बहुत शौकीन थे और वेस्टर्न म्यूजिक से उनका जुड़ाव पिता की वजह से ही हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि चाय बागानों से लेकर आगे बंगाल के खेतों तक सलील चौधरी का जुड़ाव आम आदमी की पीड़ा से होता चला गया और वो उसकी तकलीफ से जुड़ते चले गए। ये उनके जीवन का आधार भी बनता चला गया। आपको बता दें कि सलील चौधरी ने बचपन में बांसुरी, हारमोनियम और इसराज बजाना सीखा था। इसके अलावा अपने बड़े भाई की प्रेरणा से 6 बरस की उम्र से ही उन्होंने पियानो बजाना भी सीख लिया था। सलील चौधरी ने जो अपनी पहली कंपोजिशन की थी वो आज तक मौजूद है और हम उसकी एक झलक आपको सुना रहे हैं। सन 1944 से सलील चौधरी बंगाल के किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। अब वो नाटक और गीत लिखने लगे थे। सन 1944 में सलील चौधरी कोलकाता आ गए अपनी स्नातक की पढ़ाई करने के लिए। इस दौरान वो जुड़ गए इप्टा से। यहां उन्होंने जनगीत तैयार करने शुरू किए। ये वो गीत थे जिन्हें देवव्रत बिस्वास, हेमंत मुखर्जी, श्यामल मित्रा, संध्या मुखर्जी, मानवेंद्र मुखर्जी, सुबीर सेन और प्रतिमा बनर्जी जैसे प्रसिद्ध गायकों ने गाया था। इन्हीं में से एक गाने की झलक।

जिस पहली बांग्ला फिल्म में सलील चौधरी ने संगीत दिया था वो थी परिवर्तन। ये सन 1949 में आई थी। इसके बाद सलील चौधरी ने करीब 41 बांग्ला फिल्मों में संगीत दिया और इसके बाद प्रारब्ध उन्हें मुंबई ले आया। आकाशवाणी कोलकाता को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि किस्मत का मोड़ उन्हें मुंबई ले आया था। बड़ी ही दिलचस्प घटना है। दरअसल एक ऐसे किसान की कहानी पर स्क्रिप्ट लिख रहे थे सलील दा, जो अपनी जमीन को खो बैठता है बढ़ते हुए कर्जे की वजह से और फिर कोलकाता आ जाता है ताकि अपना गुजारा चला सके। जाने माने निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी जब कोलकाता गए तो सलील दा ने उन्हें अपनी इस लिखी जा रही स्क्रिप्ट का प्रीमाइस सुनाया। ऋषिकेश मुखर्जी बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने सलाह दी कि ये कहानी तो बिमल रॉय को सुनानी चाहिए। सलील चौधरी बिमल रॉय के पास पहुंचे, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि किसी जरूरी काम से बिमल रॉय को मुंबई जाना पड़ा था। एक हफ्ते के बाद बिमल रॉय ने सलील चौधरी को एक टेलीग्राम भेजा। इस टेलीग्राम में लिखा था, तुम अपनी इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की तैयारियां करो। इस तरह से सन 1953 में 2 बीघा जमीन आई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता और उससे प्रेरित सलील चौधरी की एक कहानी पर आधारित थी। 2 बीघा जमीन ने भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया और सलील चौधरी की जिंदगी को भी, क्योंकि अब वो मुंबई के फिल्म उद्योग से जुड़ गए थे। 2 बीघा जमीन को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। इसके अलावा कांस फिल्म समारोह में भी इसे पुरस्कृत किया गया। यहाँ से आगे सलील चौधरी की यात्रा कामयाबी और प्रयोगों की यात्रा है। लोक गीतों की धुनों को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने गानों में परोया है, जैसे फिल्म मधुमती का ये गीत।

0: दरअसल इस गाने का रिदम सुने तो आपको समझ आएगा कि असम का लोक संगीत इस गाने में धड़कता है। असम के वो चाय बागान जहां सलील चौधरी का बचपन बीता था, इसी तरह से मधुमती फिल्म का ये गाना सुनिए।
1: दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा।
0: असल में ये गीत एक पोलिश लोकगीत पर आधारित है। जब हम इस मूल लोकगीत को सुनते हैं और उसके बाद मधुमती के इस गाने को सुनते हैं तो समझ ये आता है कि मधुमती का गीत मूल पोलिश लोकगीत से बेहतर बन पड़ा है। इसका कारण यह है कि सलील चौधरी अगर किसी धुन से प्रेरित भी होते थे तो वो उस धुन को अपने भीतर जज्ब कर लेते, उसके बाद कुछ ऐसा रचते जो अपने आप में अनमोल होता था। संगीत का जुनून इतना कमाल का था कि एक बार कोलकाता से मुंबई के सफर में सलील चौधरी अचानक बीच में गायब हो गए और कई दिनों तक गांव-गांव भटकते रहे। कारण यह था कि उन्हें काबुलीवाला फिल्म में लोक संगीत का इस्तेमाल करते हुए अपना संगीत तैयार कर

लेकिन सलील चौधरी की पकड़ केवल बांग्ला लोक संगीत पर हो ऐसा नहीं था। हम आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक का सलील चौधरी का जुनून कुछ इस तरह था कि मुंबई के काला घोड़ा नामक इलाके में उन दिनों की एक मशहूर म्यूजिक शॉप में सलील चौधरी अक्सर नए रिकॉर्ड्स तलाश करते हुए पाए जाते और वेस्टर्न म्यूजिक का कोई नया रिकॉर्ड उन्हें नजर आता फौरन खरीद कर सुन लेते और अपने पास रख लेते। जब भी लता मंगेशकर किसी गाने की रिकॉर्डिंग या रिहर्सल के लिए सलील दा के पास पहुंचती तो वेस्टर्न म्यूजिक का एक नया तोहफा उनका इंतजार कर रहा होता था। वेस्टर्न म्यूजिक की सलील चौधरी की दीवानगी की एक मिसाल सन 1961 फिल्म छाया। महान ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन मोजार्ट की 40वीं सिम्फनी पर आधारित ये गाना सिम्फनी की चाशनी में भीगा और सुरों की मिठास से थड़कता।

0: दिलचस्प बात यह है कि सलील चौधरी ने अपने फिल्मी गानों में रवींद्र संगीत का भी इस्तेमाल किया है। फोक म्यूजिक, रवींद्र संगीत, शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक को जोड़कर सलील चौधरी ने संगीत का नया मुहावरा गढ़ा था। यहां कुछ मजेदार बातें। सलील चौधरी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन उन्होंने कई ऐसी फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जिनमें उनका संगीत नहीं था, जैसे बिमल रॉय की फिल्म देवदास, यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर, गुलजार की फिल्म मौसम, सुनील दत्त की फिल्म यादें वगैरह। सलील चौधरी ने कई ऐसे गाने दिए हैं जो मूल रूप से बांग्ला में कंपोज हुए थे और उनका हिंदी संस्करण सलील दा ने तैयार किया, जैसे फिल्म आनंद का ये गीत।
1: जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना।
0: और इसका मूल बांग्ला गीत ये रहा।

सलील दाने केवल फिल्मी गाने ही तैयार किए हों ऐसा नहीं है। जब उनकी बेटी अंतरा छोटी थी तो उन्होंने बांग्ला के नर्सरी गीत तैयार किए। अंतरा इतनी छोटी थी कि माइक्रोफोन के सामने स्टूल रखकर उस पर उनको खड़ा करना पड़ता था। ये वो बांग्ला नर्सरी सॉन्ग हैं जिन्हें गाते हुए न जाने कितनी पीढ़ियां बड़ी हुई।

0: दिशनी तुरा की नाड़ा बदिशनी।
1: यहाँ हम इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि सलील चौधरी ने केवल फिल्मी गाने तैयार किए हों, ऐसा नहीं है। सलील चौधरी ने कई जनगीत तैयार किए और ये गीत नाट्य टोलियां और युवाओं की टोलियां आज भी गाया करती हैं, जैसे शैलेंद्र का लिखा ये बेमिसाल नगमा।

सलील चौधरी के संगीत का दायरा अपरिमित है, अपरिमित सही मायनों में है, क्योंकि एक तरफ इसमें हिंदी फिल्मी गीत हैं, दूसरी तरफ बांग्ला फिल्मी गीत हैं, लेकिन इसके अलावा गैर फिल्मी गीतों और अन्य भाषाओं के फिल्मी गीतों का एक विराट संसार है। गैर फिल्मी गीत हिंदी में भी हैं और बांग्ला में भी। इसके अलावा मलयालम में उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 27 फिल्मों में संगीत दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, बांग्ला में 41 फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया और कुल 13 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, जिसमें हिंदी और बांग्ला और मलयालम के अलावा मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, उड़िया और असमी भाषा की फिल्में शामिल हैं। सन 1965 में आई थी फिल्म चिमीन। इस मलयालम फिल्म में सलील चौधरी ने अद्भुत संगीत दिया था। मन्ना डे के स्वर में ये मलयालम गीत सुनिए।

अब एक और दिलचस्प घटना की बारी। सन 1972 फिल्म अन्नदाता के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। सलील चौधरी ने एक गीत बनाया जिसका मुखड़ा इतना लंबा था कि क्या कहें। अब इतना बड़ा स्केल, उन्हें लगा कि कौन गायक इसे गा पाएगा। इस गाने के लिए किशोर कुमार को चुना गया। हालांकि सलील दा डर रहे थे कि किशोर इस गाने को गाएंगे, निभा पाएंगे या नहीं। किशोर कुमार ने भी इस गाने को गाने से पहले तरह तरह के नखरे किए और तरह तरह की दिक्कतें दी। उन्होंने कहा कि वो वास्तविक जीवन तो छोड़िए, सपने में भी इस गाने को नहीं गा सकते। अब सलील चौधरी संकट में फंस गए। लेकिन जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक हुआ और किशोर कुमार पहुंचे और उन्होंने इस गाने को गाना शुरू किया तो सलील दा और वहां मौजूद सारे साजिंदे चकित रह गए। एक ही बार में ये गाना रिकॉर्ड हुआ। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास का बड़े मुखड़े वाला ये अद्भुत गीत फिल्म

सलिल दा ने एक फिल्म भी निर्देशित की थी। सन 1966 में आई फिल्म पिंजरे के पंछी में मीना कुमारी, बलराज साहनी और महमूद थे। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और निर्देशन तीनों का जिम्मा सलिल चौधरी ने संभाला था। सलिल दा दुनिया भर का संगीत सुनते थे। केवल वेस्टर्न क्लासिकल नहीं बल्कि वेस्टर्न फोक से भी उनका बड़ा लगाव था। तभी तो उन्होंने जब लेव निपर की ट्यून मीडो लैंड सुनी तो इस हंगेरियन फोक ट्यून को उन्होंने हिंदी सिनेमा के एक कालजयी गाने में बदल दिया। वो गाना था

यहाँ एक और मजेदार बात बताएं। बचपन के दिनों में एक दरबान को गाना गाते हुए उन्होंने सुना। ये गाना उनके जहन में छप गया। आगे चलकर सन 1954 में इसी धुन को उन्होंने फिल्म नौकरी के इस गाने में बदल दिया।

पुरस्कार, सम्मान, पेशेवर काम, धन संपत्ति, इन सब चीजों से सलील चौधरी को कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपने संगीत के मुसाफिर थे। संगीत की दुनिया का ये मुसाफिर बस काम करता रहा। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी कौन सी फिल्में बड़े बैनर की हैं और कौन सी छोटी मोटी फिल्में हैं।

दुनिया के हर कोने में सलील चौधरी के संगीत को पसंद करने वाले, सराहने वाले और उनके दीवाने मौजूद हैं। अच्छा काम कभी जाया नहीं जाता। सलील चौधरी भले मुख्य धारा के बहुत ही कामयाब और धनी संगीतकार नहीं रहे, लेकिन उन्होंने असली दौलत कमाई और वो दौलत थी संगीत के सुर और उनके प्रशंसक। तभी तो

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार सलील चौधरी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर,
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।

0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। 10 बजे हैं, कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी भोपाल से अब आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरालाल लोंगरे, वाचन स्वर दीपा सिंह। खंडवा जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। ये त्योहार जिले में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और बाल गोपाल का विशेष श्रृंगार पूजन अर्चना की गई। ओमकारेश्वर के प्राचीन विष्णु मंदिर में द्वारकाधीश प्रतिमा का विशेष श्रृंगार हुआ। हरसूद में शोभा यात्रा निकाली गई और कई जगह मटकी फोड़ कार्यक्रम भी हुए। जिले में सोयाबीन की फसल पर फफूंद जनित रोग, चक्र भ्रंग पत्ती खाने वाली इल्लियों और येलो मोजैक का असर देखा जा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों को फसल की नियमित निगरानी की सलाह दी है। येलो मोजैक से प्रभावित खेतों को खेत से निकालकर नष्ट करने और सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए पीले स्टिकी ट्रैप लगाने को कहा गया है। जिले में इस साल अब तक 607 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। हालांकि ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश से नर्मदा में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। इससे इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांधों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अगस्त के आखिर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी खंडवा पहुंचे थे। उन्होंने ओमकारेश्वर के एकात्मधाम में पंचायतन मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण की शुरुआत की गई। मंदिर में भगवान शिव मुख्य देवता होंगे, जबकि विष्णु, सूर्य, गणेश और भगवती शक्ति के मंदिर भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकात्मधाम भारतीय ज्ञान और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। खंडवा के माखनलाल चतुर्वेदी कन्या महाविद्यालय में कोरकू और निमाड़ की लोक परंपराओं पर 2 दिवसीय परिसंवाद हुआ। इसमें पारंपरिक अनुष्ठानों के संरक्षण और नई पीढ़ी तक उन्हें पहुँचाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से खंडवा जिले में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान सेवा, जन कल्याण और विकसित भारत से जुड़े 13 तरह के कार्यक्रम होंगे। रक्तदान, पौधरोपण, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। खंडवा जिला न्यायालय में 12 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गई। न्यायिक अधिकारियों को

0: आपसी सहमति से ज्यादा मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए। चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों पर चर्चा हुई। पंधारा विधानसभा के देश गांव में औद्योगिक विकास क्षेत्र बनाने को शासन से मंजूरी मिल गई है। यहां प्याज प्रसंस्करण समेत कृषि आधारित उद्योग लगाए जा सकेंगे। भूमि चिन्हांकन और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को जमीन देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं जिले में 16 सितम्बर से 8 अक्टूबर तक कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य की टीमें घर घर जाकर संभावित मरीजों की जांच करेंगी। चिन्हित मरीजों को नियमित इलाज से छोड़ा जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले व्यक्ति को सरकार 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। ऐसे लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। योजना के तहत देश के 10 श्रेष्ठ राहगीरों को 1-1 लाख रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। खंडवा के खालवा क्षेत्र में कृषि विभाग की टीम ने मक्का सोयाबीन की फसलों का निरीक्षण किया। मक्का में फॉल आर्मी बम, हेलिकोवर्पा और सेमी लूपर जैसे कीटों का प्रकोप मिला है। टीम ने किसानों को कीट नियंत्रण और दवाओं के सही इस्तेमाल की जानकारी दी। श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलाने के लिए डिजिटल लेबर चौक ऑफ MP ऐप शुरू किया गया है। पेंटर, बढ़ई, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और ड्राइवर जैसे श्रमिक इस ऐप पर काम तलाश सकते हैं। कन्नौज जिले में 2 से 30 सितंबर तक अलग अलग गांवों में निशुल्क मोतियाबिंद जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। आज किलौद और बूरी सराय में शिविर आयोजित होंगे। मरीजों की आंखों की जांच के साथ जरूरत के अनुसार इलाज और चयनित मरीजों के निशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित उल्लास एक अभिनव प्रयोग कार्यक्रम के विजेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए गए। निबंध, चित्रकला और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर खंडवा जिले में समरसता संकल्प अभियान और समरसता यात्रा जारी है। यह अभियान 20 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा। अलग अलग जगहों पर यात्राएं और जन भागीदारी के कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके जरिए संत रविदास की समानता, सामाजिक एकता और भाईचारे के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और अंत में बात संत सिंगाजी महाराज जी की। उनका 467वां समाधि दिवस संत सिंगाजी धाम में श्रद्धा के साथ मनाया गया। समाधि स्थल पर महाआरती, भजन कीर्तन, प्रसादी का आयोजन हुआ। संत सिंगाजी की निर्गुणी वाणी और भजनों की परंपरा आज भी निमाड़ में लोकप्रिय है। खंडवा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: FM बैंड 102.6 MHz पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। DJ प्रस्तुत है कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत।

चिट्ठी से लोगी सुनमे बारे हमारे सभी बिन्ना भैयारों के लाने सैलू साहू की राम राम पहुंच जाए। भैयारों आपकी प्यारी प्यारी चिट्ठियाँ और व्हाट्सएप से जो संदेश भेजे हैं भी हम तक पहुंच गए हैं और लेके आ गए हम आपकी पसंद के लोकगीत। और जब पहली चिट्ठी आप पहुँचाई है ग्राम मोहली तहसील बांद्री जिला सागर से, भैयारों के नाम है शिवनारायण तिवारी, रश्मि तिवारी, नंदिनी तिवारी, सत्यम तिवारी, शिवम तिवारी, नितिन तिवारी, महिमा, माही मिश्रा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ए लोकगीत को सुनबो चाहो है धर्मश्री मंगलधाम कॉलोनी से श्याम रेकवार, लक्ष्मी, वंदना, विराज, विक्रम, बादल, विनय, हल्ले, खुशबू, टक्कू, भूमिका और दक्ष रेकवार ने। ए लोकगीत को व्हाट्सएप के माध्यम से फरमाइश पहुंचाई है ग्राम गढ़ौला से, भैयारों के नाम है नेहा अठिया, दामनी अठिया, राज अठिया, जुगल किशोर साहू, आनंदी प्रजापति, राम बाबू रजक, कोमल प्रजापति और इनके पूरी मित्र मंडली। तो इन सबकी पसंद पे सुनाते हैं अपन जो कार्यक्रम को पहलो लोकगीत एको गा रही है शकुंतला राजपूत।

अगले लोकगीत के लाने चिट्ठिया पहुंचाई है ग्राम कुमेरिया भटौली तहसील गड़ा कोटा से। लिख विवारी भैया रहे हैं मिहिलाल खैरैया, अर्जुन नन्नू, रामकरण महाजन, बाबूलाल, जगदीश और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये लोकगीत को सुनबो चाहो है किशनगंज से बेनी बाई, कस्तूरी बाई, कमल रानी, सीता रानी, श्याम रानी, आरती, भारती, बीरा, अभिजीत, राजा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये लोकगीत को सुनबो चाहो है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन, सेवा, सेवांशु, यश, अवधेश, प्रेम नारायण, रमेश कठोनिया, सुजीत, पंडित रमाकांत दुबे और इनकी पूरी मित्रमंडली। ये लोकगीत को व्हाट्सएप के माध्यम से फरमाइश पहुंचाई है ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह से। भैया के नाम है सेवक, ग्राम सेवक मिस्त्री विद्या, हीरा, कमला, दयावती, पार्वती, अंकित, ऊषा, माही, मानसी और इनके परिवार के सभी सदस्य। और व्हाट्सएप से यही लोकगीत की फरमाइश पहुंचाई है बस स्टैंड रामटोरिया तहसील बड़ा मलहरा जिला छतरपुर से बहादुर चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, बड़े भैया हरे राम, दशरथ श्रीमती, शीला भाभी, दसोदा भाभी, भागवती भाभी, ममता देवी, उमा देवी, सावित्री, रामकली देवी, काजल, करण बाबू और इनके पूरे ग्रामवासी। तो इन सबकी पसंद पे सुन रहे अपन जो बरसा गीत, एक गा रहे हैं इंद्रपाल विश्वकर्मा।

0: भैया अब अपन ने जो लोकगीत सुनो इंद्रपाल विश्वकर्मा की आवाज में, और अब सुनाते हैं जो जरूरी संदेश।
1: वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर द्वारा प्रायोजित वात्सल्य, बच्चों का सुनहरा भविष्य। सुनिए
2: रविवार सुबह 8:25 पर।
0: संदेशों के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आपको स्वागत है, और अगली फरमाइश जब पहुंचाई है छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, कविता गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता, इनके परिवार के सभी सदस्य। ए लोकगीत को सुनबू चाहो है ब्योहारी जिला सहडोल से हरिलाल मोची, शंकर राव मोची, लालचंद, देवेंद्र चरणदास, बेटी नेहा, नरेंद्र और इनके परिवार के सभी सदस्य। ए लोकगीत को व्हाट्सएप के माध्यम से फरमाइश पहुँचाई है ग्राम धनोरा राहतगढ़ से, भैया आ रहे हैं हरिशंकर दुबे, राधा रानी दुबे, गौरव दुबे, ज्योति दुबे, रजनी तिवारी, राखी दुबे, कृष्णा कीर्ति, राधिका, गौरी और पूरे ग्रामवासी। तो इन सबकी पसंद पे सुनाते हैं अपन मालती विश्वकर्मा को गाओ भाव जो लोकगीत।

अबे अपन ने मालती विश्वकर्मा को गाओ भाओ जो लोकगीत सुनो और अगले लोकगीत के लाने जा फरमाइश पहुँचाई है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तारिणी ठाकुर सूरज ठाकुर ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर और इनके परिवार के सभी सदस्य। ए लोकगीत को सुनबो चाहो है सुरखी से दीपेश सेन दिनेश सेन मुकेश सेन नीतीश सेन संस्कार सेन लक्ष्य सेन निहाल देवांशी नरेंद्र महेंद्र मुनमुन निशी कार्तिक मोनू अंश सोमना नामदेव अंश नामदेव मुन्ना प्रजापति नीलेश प्रजापति संदीप नामदेव नवाब खान उस्मान खान उनके समस्त ग्रामवासी। ए लोकगीत को सुनबो चाहो है मालथोन से बंटू पंडा जी भूरे दीक्षित रिक्कू राजपूत राकेश कुमार प्रजापति बाबू राय जगदीश साहू और इनकी पूरी मित्र मंडली। और ए लोकगीत को सुनबे के लाने फरमाइश पहुँचाई है क्वायला से भैयारों के नाम है नरेंद्र चाचा राज बहादुर चाचा पुष्पेंद्र चाचा ब्रजेंद्र सिंह वकील साहब देशराज सिंह लम्बरदार इनकी पूरी मित्र मंडली। तो इन सबकी पसंद पे सुन रहे अपन कार्यक्रम को जो अंतिम लोकगीत एक हो गा रहे हैं देवकी नंदन सकवार।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनमे बारी हमारी सभी सखियों हों सहेलियों को सहलू साहू की राम राम पहुंच जाए। मैंने देखो 10:30 बज गए हैं घड़ी में और हमारी बहनें इंतजार कर रही कि आज अपन कार्यक्रम में का लेके आए। तो बहनों जानते ही हो तो अपनी मौसम से और जैसा समय चला थे वही हिसाब से अपनी संबंधित चर्चा रहे थे और अच्छे से लोकगीत सुनवा के आपको मनोरंजन करवाते हैं। तो बहनों सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं बस कार्य की। हाँ बहनों देखो लगातार पानी गिर रहा है और बस कार्य में अपन देख ही रहे हैं कि जैसे कई प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं और ऐसे में जो दूषित पानी पिए थे अपन उससे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो आज अपन यही चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे बस कार्य में अपन ये दूषित पानी से कैसे बचाव करने हैं, कैसे बच के रहने हैं जिनमें अपन बीमारियों से बची रहे। तो बहनों अपने स्वास्थ्य को पानी से सीधा रिश्ता है। अब पीवे बारे पानी की